0: जी खड़े खड़े क्या देख रहे हैं आप?
1: कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
0: तो चांद को ही देखे ना।
1: मगर वो सांस नहीं लेता।